तिरंतन पादवरिया राग असा महला चौथा सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता पे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवै है जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुखवासी।

अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे उधारो, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। इह वस्त तजी नह जाई, नित नित राखे उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारो।

चितना है तो चित ले, निस दिन में प्राणी छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। चितना है तो चित ले, निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बिहात है, फूटे कट ज्यों पानी। दिन ते पहर पहर ते घड़िया, आव कटै तन छीजै। काल अहेरी फिरह बदिक ज्यों, कहो हो कवन बिद की जय। सो कहो तल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे साहो। जिस पास बहिठिया सोही है, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुरठ महला पंजवा,

जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुक्म सब सृष्टि सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप

0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
1: पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान।
0: पंचे सोहे दर्रा जान पंचा का गुर एक ध्यान।
1: जेको कह करे विचार करते कह करने ना इस्मान।
0: तौल तरम दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत।
1: जेको बुझे होए सुचार तबले ऊपर के ताबार।
0: धरती होर परै होर तिस्ते पार तले कवन जोर।
1: जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बुरी कलाम।
0: एह लेखा लिख जाने को।

0: सर्वत्र गंता
1: जय सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: कि सर्वत्र काजे कि सर्वत्र राजे
1: जय सर्वत्र सोखे के सर्वत्र भोखे
0: कि सर्वत्र त्राणे कि सर्वत्र प्राणे
1: जय सर्वत्र देशे कि सर्वत्र

0: संत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदा
1: हर भर गंज हर नर प्रपंज
0: हर गन प्रणाम मुन मन सदा
1: हर नर खंड भर नर अमंड
0: हर भव अनास मुन मन प्रकाश
1: गुन गन प्रणाम जल थल मुदाम
0: अचिज अंग आसन अपार
1: उपमा अपार गत मित उदार
0: जल थल अमंड दिस विश अपार
1: जल थल महंत दिस विश बेअंत
0: हर भव अनास ते तर तुरा
1: आजान बाहु एक के सदाहु
0: ओंकार आद कथनी अनास
1: खल खंड के आल गुर भर अकाल
0: कर पर नाम चित चरण नाम
1: अंचिज गात अजिज न बात
0: अंजंज गात अनरंज पार
1: अंटुट पंडार अंडठ पार
0: अंडीट तरम अत डीट कर
1: अनबर्न अंत दाता महंत
0: बोल मना छंत प्रसाद करुणा ले है अर काले है
1: खल खंडर है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर
1: कल कान है सर्व वारण है
0: त्रित के तन है जग के कर
1: मन मान्या है जग जान्या है
0: सरपन पर है सरपन कर
1: सर पाछ है सर नाश है
0: करुणा कर है भी संबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कल खंडस
1: पाते पर है करुणा कर है
0: जपा जपे थपा थप
1: अर्ता कृत है अमृता अमृत है
0: अमृता अमृत है करुणा कृत
1: अर्ता कृत है तरनी त्रित है
0: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: अर्ता कृत है अमृता अमृत है
0: अजबा कृत है अमृता अमृत
1: है नरनायक है कल कायक है
0: दिसंबर है करुणा
1: लिपनायक है सर्पायक है
0: पंजन है अर्गंज है
1: रिप्तापन है जब जापन है
0: अकलन कृत है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है हरता हर है।

0: राज संताम संसात रूपे
1: नमो परम तंतंगा तंतंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान
1: नमो भोज भोजे नमो पान

0: एक अछरी छंद अजे अले अबे अबे
1: अबू अजू अनास तास
0: अगंज अपांजा लख अपाख
1: अकाल दयाल अलेख पेख
0: अनाम अकाम अगा अडा
1: नाथे परमाथे अजोनी अमोनी
0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्म अपर्म अगंज अलेखे
0: उजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
0: कामन बेपूते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्म परना नासी सुतर्म प्रभुते
0: सला सचदानंद सत्रन परना
1: हरि मल को निंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय बेबूते गजायब गनी
1: हरियम करियम करी मुल

0: समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया।
1: इसनो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया।
0: कह नानक लेवे बाजो क्या करे बेचारिया।
1: आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया।
0: जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
1: कर कृपा किल बिकटे ज्ञान अंजन सारिया।
0: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सचे सवारिया।

0: सच्ची वाणी,
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है वाणी,
0: वाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची वाणी,
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आग बुझानी,
0: हर हर नित करे रसना कया कछु न जानी,
1: चित जिनका हिलया माया बोलन पैर वाणी,
0: कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची वाणी,
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ,
0: सबद रतन जितर जित मन लागा एओ हुआ समाओ,
1: मन मिलया सच्चे लाया पाओ,
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए,
1: शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ,
0: शिव सकत आप उपाय के करता आपे हुकम वर्ताए, तोड़े बंधन होवे मुक्त सबद मन वसाए,
1: आप करे सो होवे
0: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए।

0: प्रसाद चौपाई पन्वाद एक अंकारा जल थल मैयल की उपसारा
1: पर कब गतवनासी लोक चतरदस ज्योत प्रकाशी
0: हस्त कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सिर जाना
1: अवे अलख पुरख गवामी सब कट कट के अंतर जामी
0: अलख रूप अचे अनपेखा राग रंग जय रूप न रेखा
1: बंचे सबूते न्यारा आद पर कद वे अबकारा
0: बंचे हंजे जात न पाता सदर मित्र जय तात न माता
1: सते दूर सवंते नेरा जल थल मैयल जाए।
0: I know.

0: ब्रह्मा रुद्र पाए खुपाए
1: लोक चतुर्दश खेल रचायो बहुर आप ही बीच मिलायो
0: दानव देव निंद पारा गंधर्व जरच रुचे सुपचारा
1: पवेक पवार कहानी कटकट के पट पट की जानी
0: जात मात जय जात न पाता एक रंग का हो नहीं रहता
1: सर्व ज्योत के बीच समाना सबू सर्व ठौर पहचाना
0: काल रहतन काल स्वरूपा लख

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सुवैसा हर त्याई मेरे जियड़े तां सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाव जय हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर रहि मत दीनी जप हर पवजल तरना सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हां साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै एक शब्द लिवलाए नाव निधि अठारह सिद्धि